आदरणीय थरंगा शुभ संध्यावाक इकी बिंदुम संताप गुड़ गैसी केवियन जीविते सित्रिदुम अपमनाए मोहतकट हो अस्वसिलक एत्ते गीते का आरुत एवा गेम मांगी दारुआन मेसिया लेक राम्य नवन अतीते दुख सप समबर वर्तमान मेसियल देवा लेक गलागने आवी जीविते හැමදාකම වගේ නෝර එලියන් සංජීවා